0: हेला नशाला हेला नशाला
1: दिवे ही एफएम के खुम में गटी रहे के फैशन विस दिवे ही अमिल रागे के लवे को

0: عشان باير ولا انت؟
1: نو لا
0: हमें ये देखिए हमारा शुगर हो रही है इधर
1: राशो का गे का हम आने हैं बुढ़ान्या होना
0: कोई बार तब बाला लाके सुनने को ना
1: हमारे साथ ने कुछ मासी माले पेरेड आ दें इस अने इस विलेरे और सम्माल ऐसे ये करने बाला
0: हाँ नोनी हम गे का असो फोरी का तो दिमाग दिमाग निकू मेला बाला ली मावे से कला वरं ये तो फील अन्ना आने ये
1: ගොයගෙන් දාන් හොරින් හ දාම් බේනුන් වන්න සවස්නු දෙවේනු දරි බේනමෙන්නු එදාස බලන් දාස
0: දෙ ඒ කන්නේ දාහිතෙන් නොවේ
1: ඒ කන්නකු නො දංආ
0: ඕකේ එහෙමීමා දෙන් කොමේකස් මියදුගේ හරක ඇත්ත මෝසන් තන් දේ කමක් වඥාමුන් බලාලන් දෙ කොමිස් තිමායක නිකුමෙලම් වනගේ ඒ දු නිම්මා හරක ඇත හුජහෙන කුරකු බෑරි වෙලන් ඉගේ दे मेल होती कौन कभी इन आगे शेड्यूल के लिए विफा
1: ना ना दो हम आम को बस पूरा संतान तो मिलना
0: है ओके खास है ना दो ये तो तेरे के दिन खास होते हैं मेरे शेड्यूल
1: नो
0: बाकी बदल लेने ती दिन रशम बेरो वेला खाओ कंकर का नॉन नीति में करने का शेड्यूल अब माँ बोल बदले मिना है दो इना
1: वेदाने हैं कमा
0: ओके ఏది ఫెల్ అవుతా హాస జహాల్ దేమి హాస కొల్లాను
1: అడో హైమన రెండు అమ్మ హమయాదు మీ పాహీగ బాస్తే దో
0: పాహీగ బాస్తే
1: పాహీయం హమ హైపి బాస్తే గుణలం బేణ ఆ
0: ఎహెం దో నన్ నొట్టి కొల్లి
1: ఆ ఎహెం వేక్ ను కొరియ రెసెంగే కొంబైక్ కమ మితి బియవ సాడ వెస్ నా హమ కొల్లి ఉరఫ
0: రమ్లా ఇకని మియదు देन ओके देन फहिया हम खास कौन हम ती लावा मिजा हाल देन इंगे फहिया फावे रूफन दो है देन रामलाइस की आला ना
1: मिकुल से वैसे हम आदें हैप्पी बर्थडे दो देन
0: रामला के बर्थडे नो ने ने
1: आ इधो दिमाग नो ये नो ऐसा हम आवाज़ ये नो मिमो
0: ओहो माहो माहो के बस किए गो थे दो ना ने हाँ दिमाग में मत किए माहो के फहुदो देन बदल
1: Hmm.

0: नुआ दी है 1 MHz दिवे ही FM मैं दुरो नमा दो वाको तु
1: अल्लाहु अकबर अल्लाह

0: Viral Vibe. Viral Vibe.
1: चोली के पीछे क्या है यकी नवार सते गणवधि तिम्मनाहा रिलीज कुरी मशहूर फिल्म खलनायक कहिमेने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के म्यूजिका अलका यग्नि कदी इला अरुण किया फवा वरफाहा कोले वेलावे मिलावा फुरतमा आमु वेरु एगे लेमु कहिमेने बाय लफसतो गे सबुं मुल इंडिया गे बोडो बहुसक मिलावा वेगें दिया मेकमा गुलेगें दूरदर्शन ना ऑल इंडिया रेडियो ए मिलावा फुणुवुं वगुती गोतु मना कुरी नमवेस मे बहुस्तव के सबों लवा के मकबूल कंग इतुरा बोडवे के दिया एगे नतीजा के गोतो लवा नेरुनो फुरतम हफ्ता के तेरे गे एकनिवेस एक करोड़ वरे गिना कैसेट कॉपी विकी के दिया कम फाहा कोलेवे देहा सबविस वनाहर नुकु फिल्म क्रूगा मिलवा के रिमिक्सिंग हिमनु माय को सोशल मीडिया के एक ही प्लेटफॉर्म तवगा मिलावणी अनेक कावस वर बोडम वायरल वेफा